0: Commonwealth Games.
1: आवाजें अनेक, नारा एक. अगले 10 दिन सात समुंदर पार स्कॉटलैंड के ग्लासगो की फिजाओं में भी इंडिया इंडिया के ये नारे गूंजते सुनाई देंगे, क्योंकि आगाज हो चुका है 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का. इंडिया
2: ओलंपिक जैवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा इज द बिग अट्रैक्शन. ही वन गोल्ड एट द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स. Boxer Lovina Borgain is back as well and brings in the baton. Three-time Commonwealth gold medalist and Tokyo Olympic silver medalist Mirabai Chanu carries the India flag. He won 61 medals last time in Birmingham, a long way from a single bronze at their first game in 1934.
3: 123 खिलाड़ी 10 अलग-अलग खेलों में टीम इंडिया की जर्सी पहन तिरंगे को सबसे ऊपर लहराने का सपना लिए उतरेंगे और उनके साथ उतरेगी करोड़ों भारतीयों की प्रार्थनाएं, उम्मीदें और शुभकामनाएं.
1: अलग अलग भाषा वेशभूषा वाले सभी देशवासियों की धड़कन एक होगी. नीरज चोपड़ा का हर भाला जब आसमान की ओर जाएगा तो उसे देखने वाली निगाहें अलग अलग होंगी, लेकिन उम्मीद एक होगी.
3: लवलीना का हर पंच सिर्फ सामने वाले को पीछे नहीं धकेलेगा, शायद किसी छोटे शहर की लड़की को ये यकीन दिलाएगा कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं.
1: मीराबाई चानू जब वजन उठाएंगी तो सिर्फ बारबेल का वजन नहीं होगा, उसमें करोड़ों उम्मीदों का भार भी होगा और उसे उठता देखकर शायद हमें भी अपने कंधे थोड़े मजबूत लगेंगे. खेलों में मुकाबले अलग हो सकते हैं, लेकिन सपना एक है, अपने तिरंगे को सबसे ऊंचा देखना.
3: हाँ, इस बार खेलों का दायरा कुछ सिमटा हुआ है. 2022 में बर्मिंगम में हुए संस्करण में जहाँ 19 खेल थे, तो वहीं इस बार सिर्फ 10 हैं. बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, स्क्वाश और टेबल टेनिस जैसे वो तमाम खेल जिसमें भारत ने ढेरों पदक जीते, वो इस 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है.
1: इसलिए कुल पदकों की संख्या कम होना तय है. और बता रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रतिनिधि हिमिका चौधरी.
4: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स हम लेके आए. जैसा कि सबको पता है अब कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन है, हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है, तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा.
3: इसी साल जापान में एशियन गेम्स भी होने वाले हैं, जिनकी तैयारियों के लिहाज से भी कॉमनवेल्थ गेम्स बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और भारत की महानतम धावकों में से एक पीटी उषा से बेहतर ये कौन जानता है.
5: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा. होप दैट दे डू गुड. एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है. इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एनीवे 2 मंथ्स इज देयर दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस. हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा कंपटीशन तो इधर ऑर्गेनाइज किया है, बट फिर भी व्हाट आर ऑल द चेंजेस वी हैव टू डू, ऑल टीम विल बी देयर.
3: खेलों के औपचारिक शुभारंभ से पहले ही भारत ने जश्न मनाने की पहली वजह हासिल कर ली है.
1: 2021 में भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली लवलीना बोरोगेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है, यानी एक मेडल तो कंफर्म्ड है. उनका सेमीफाइनल मुकाबला 31 जुलाई को टुवालू की तफाकी से होगा.
3: गुरुवार 23 जुलाई को भारत का अभियान लॉन बॉल से शुरू हुआ, वही खेल जिसने बर्मिंगम 2022 में भारतीय खेल इतिहास को एक नई पहचान दी थी. लवली चौबे, पिंकी सिंह, नेमोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की की चौकड़ी ने विमेन फोर्स में 2022 में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, तो वहीं पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया था.
1: इस बार लॉन बॉल्स में ये इवेंट नहीं है. 2026 में केवल सिंगल्स यानी एकल वर्ग और पेयर्स यानी युगल वर्ग को जगह मिली है. साथ के साथ इस बार बाहर नेचुरल ग्रास के बजाय ये खेल इंडोर्स यानी अरीना के अंदर कारपेट वाली घास पर खेला जाएगा। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। खिलाड़ियों ने एक हफ्ता पहले ही वेन्यू पर पहुंच जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी और बता रहे हैं टीम के सदस्य नवनीत सिंह।
0: इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट दैट द कॉमनवेल्थ गेम होस्टेड फॉर दिस ईयर इन द 2026 बर्मिंघम वाज अ ग्रास ग्रीन एंड दिस ग्लासगो इज इंडोर कारपेट। सो वी आर गोइंग अ फ्यू वीक्स अहेड ऑफ द गेम्स इन ब्रिटेन for the same to practice on that. So definitely that's going to help us to get us a little better and give us advantage over the new format and play our best with the very high quality players in Glasgow.
3: Uska asar dekhne ko mila. Women pairs mein Rupa Rani Tirki aur Pinky ki jodi ne Malta ko romanchak mukable mein hara kar jeet ke saath abhiyan ki shuruaat kar di hai.
1: दोनों टीमों ने एक एक सेट जीता जिसके बाद टाई ब्रेकर में भारतीय जोड़ी ने बाजी मारी। इनका अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल ने मौजूदा आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन कनाडा के रायन बेस्टर को हराया और अगले दौर में प्रवेश पा लिया। उनका अगला मुकाबला फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से शुक्रवार 24 जुलाई को होगा। पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय प्रशंसकों को एथलेटिक्स में है, जिसमें सबसे आगे नाम है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोट के चलते 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे और पिछले साल हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ नीरज ने किसी इवेंट में टॉप 2 में फिनिश नहीं किया। लेकिन इस सीजन में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर दूर अपना भाला फेंक नीरज ने यह दिखाया।

0: कि जीत की भूख उनमें अभी भी बरकरार है।
1: नहीं, मैं काफी खुश हूं अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूं अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी।
0: हालांकि जैवलिन थ्रो में कॉम्पिटिशन भी उतना ही तीव्र है। नीरज के आर्च राइवल माने जाने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पिछले संस्करण में 90.18 मीटर की दूरी तय कर गोल्ड मेडल जीता था, जिसको बचाने के लिए वो मैदान पर उतरेंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे, जिनके नाम 92.62 मीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड है, वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को तो भूलिएगा मत, जिन्होंने 2022 में दोहा डायमंड लीग में 93.07 मीटर की दूरी तय कर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड स्थापित किया था।
2: दूसरा बड़ा नाम है मुरली श्री शंकर। बर्मिंगम 2022 लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता था, लेकिन करियर थ्रेटनिंग इंजरी के चलते इन्हें 2024 का पेरिस ओलंपिक्स मिस करना पड़ा था। लेकिन मुरली श्री शंकर ने चोट से उभर कर मजबूत वापसी की और अब ग्लासगो में दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है।
0: लॉन्ग जंप के अलावा हाई जंप में सर्वेश कुसारे ने हाल ही में 2.31 मीटर की ऊंची कूद लगा नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनसे भी पदक की उम्मीदें हैं।
2: साथ ही दिखेंगे तेजस्विन शंकर। हाई जंप में भारत का पहला मेडल 2022 बर्मिंगम में इन्होंने जिताया था
0: और इस वर्ष ये डेकेथलॉन में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं ट्रिपल जंप में नजरें होंगी एक और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर पर, प्रवीण चित्रवेल, जो कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पर आए थे, यानी पदक जीतते जीतते रह गए थे। 2018 के खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में पहली बार इन पर नजरें गई थी, जिसके बाद एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ये पदक जीत चुके हैं। क्या इस बार कॉमनवेल्थ में भी ये पदक विजेता बनेंगे? वहीं 100 मीटर की दौड़ में नजरें होंगी 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मॉडर्न फ्लाइंग सिख गुरिंदर वीर सिंह पर।
2: नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स की बात चली है तो 200 मीटर में आप अनिमेश कुजूर को देखना मत भूलिएगा। महिलाओं में नजरें होंगी पारुल चौधरी पर। 2023 हांगचाओ एशियन गेम्स में इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ और 3000 मीटर की स्टीपल चेस में भी स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती 3000 मीटर स्टीपल चेस में नजर आएंगी।
0: लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह पुरुषों की 10000 मीटर और 5000 मीटर, वो दोनों इवेंट्स जिसमें वो मौजूदा एशियन चैंपियन है, अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
2: अब बात प्रियंका गोस्वामी की, पहली भारतीय महिला जिन्होंने रेस वॉक में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जितवाया था।
0: पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव मीना और कुलदीप कुमार पर भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होंगी।
2: शॉर्ट पुट में दो बार एशियन गेम्स चैंपियन बन चुके तजिंदर पाल तूर प्रबल दावेदारी पेश करते नजर आएंगे।
0: ये तो बात रही एथलेटिक्स की, अब रुख करते हैं बॉक्सिंग का।
2: मिडिल वेट कैटेगरी में लवलीना का मेडल तो सुनिश्चित है ही, पर फेदर वेट कैटेगरी में उम्मीदें जैस्मिन लंबोरिया से भी कुछ कम नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप दोनों में ही जैस्मिन के नाम गोल्ड मेडल है और 2023 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल है।
0: दो बार की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी भी 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।
2: पुरुषों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू कर रहे जादूमणि सिंह भारत का परचम लहराने का ख्वाब लिए रिंग में उतरेंगे। इस साल इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में रजत पदक जीता था और इस प्रदर्शन को दोहराने की पूरी कोशिश रहेगी।
0: पुरुषों की मुक्केबाजी में अंकुश, नरेंद्र, सचिन, सुमित और कपिल पोखरिया से भी अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा है, और बता रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह।
3: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
2: अब बात करते हैं स्विमिंग की। 2016 रियो ओलंपिक्स और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का स्विमिंग में प्रतिनिधित्व करने वाले साजन प्रकाश भी चुनौती पेश करते नजर आएंगे।
0: इनके अलावा

0: नजरें होंगी श्री हरि नटराज पर, जिन्होंने 2019 में काठमांडू में हुए साउथ एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीते थे।
1: वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को कैसे भूल सकते हैं। कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में इन्हें भारतीय दल का ध्वजवाहक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
0: अब बात कर लेते हैं आज शुक्रवार 24 जुलाई को होने वाले इवेंट्स की। भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे द अरीना में पुरुषों के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड खेले जाएंगे, जिसमें तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह भारत की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आएंगे।
1: फिर दोपहर 3:40 पर शुरू होगा पैरा स्विमिंग मेंस S13 100 मीटर फ्री स्टाइल, जहां दिखेंगे रवि वीरा वेंकटा, भवानी कार्तिक और इमाम अली।
0: पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्री हरि नटराज के प्रदर्शन पर नजर रखिएगा।
1: पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों में मेडल इवेंट्स में अशोक और परमजीत कुमार नजर आएंगे।
0: तो वहीं महिलाओं में पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक लाने की उम्मीद होगी सुमन देवी और जसप्रीत कौर से। रात 10 बजे के करीब इसी इवेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। लॉन बॉल्स में आज जीत हासिल करने वाली पिंकी और रूपा रानी तिर्की की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लोहा लेती नजर आएगी। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से भिड़ेंगे। ये तो बात रही लाइट वेट कैटेगरी की। हैवी वेट कैटेगरी में महिलाओं में कस्तूरी राजमणि और पुरुषों में सुधीर और झंडू कुमार नजर आएंगे।
1: बॉक्सिंग में पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह स्कॉटलैंड के एरन कलन से मुकाबला करते नजर आएंगे रात 11 बजे।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 74 देशों और क्षेत्रों से लगभग 3000 खिलाड़ी 10 खेलों में 215 स्वर्ण पदकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ पदकों की गिनती होगी, वहां भारत अपने खिलाड़ियों के साहस, संकल्प और सपनों की कहानी भी लिखेगा। हर जीत तिरंगे का मान बढ़ाएगी, हर चुनौती नए विश्वास को जन्म देगी और जब खेलों का ये महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तब उम्मीद यही होगी कि दुनिया भारत की उपलब्धियों को याद रखे। तिरंगा सबसे ऊंचा लहराए और राष्ट्रगान की गूंज हर भारतीय के हृदय में गर्व का एक नया इतिहास लिख जाए। आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
1: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
2: जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे डेली हाइलाइट्स कॉमनवेल्थ गेम्स यानी दैनिक झलकियां कॉमनवेल्थ गेम्स की दर्पण टिर्किया और प्रेरणा शर्मा की आवाज में।
3: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 एफएम रेनबो सात सुरे सारा दिन शांत सुरे सारा दिन।
4: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
5: নমস্কার কলকাতা
4: 107 এফএম রেইনবোতে, নমস্কার কলকাতা,
5: নমস্কার কলকাতা।
6: শুনছিলেন কমনওয়েলথ গেমস 2026-এর হাইলাইটস। আর এই মুহূর্তে আপনি ফিরে এসেছেন আবার নমস্কার কলকাতায়। পরম রয়েছে, কেটে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে। যেরকম বলছিলাম আর কি, চলে যাওয়া আর ফিরে আসা আমাদের তো এরকম চলতেই থাকে। ফিরে এসেছে পরম 7:46 নমস্কার কলকাতায়। আপনার সঙ্গে রয়েছি আর আপনারই পছন্দের গান শোনাবো, কিন্তু কে শুনতে চেয়েছিলেন গানটা সেইটা পরম খুঁজে পাচ্ছে না, এই মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছে না, খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে, কারণ পরম এভাবেই সব কিছু অগোছালো করে ফেলে। এই মুহূর্তে পরম খুঁজে পেয়ে গেছে, গানটা শুনতে চেয়েছিলেন উৎপল মাইতি বেহালা থেকে। আপাতত গান মিলন্তিতে আপনার পছন্দ
7: গান মিলান্তি, গান মিলান্তি।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगिए नाओ, सोलर पैनल लगिए नाओ। कबे थे के आमा सब बंधुरा बोलतो, किन्तु आमी मेने निये छी जबे थे के प्रधानमंत्री बोलेछेन।
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: आमी प्रधानमंत्री जीर कथाय सोलर पैनल लगिए छी आर आमार विद्युत बिल जीरो एसेछे। आपनिओ लागिए नीन।
5: पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना, आज ही रेजिस्टर करुन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: এখন ভারতের গ্রামে গ্রামে ছাদের চেহারা বদলে গেছে। আগে যেখানে ছাদে পাপড় আর কাপড় শুকোতে দেখা যেত, এখন সেখানে বিদ্যুতের বিল জিরো হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে সোলার প্যানেল লাগানো চলছে, আপনিও লাগিয়ে নিন। 78,000 টাকা সাবসিডি দিচ্ছে ভারত সরকার। 30 লাখের বেশি পরিবার তো এর সুবিধা নিচ্ছে। পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনার সঙ্গে যুক্ত হতে রেজিস্টার করুন pmsurjaghar.gov.in।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर आप सभी का चटपटा मजेदार कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप।
3: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप,
2: नॉनस्टॉप गपशप है प्रोग्राम का नाम, और जहाँ बातें होती है ढेर सारी मजेदार और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी। और सुनते हैं जबरदस्त तड़कते भड़कते गाने भी। और भाई, बाहर का मौसम तो है बड़ा ही खूबसूरत, बारिश हो रही है कल रात से, और ऐसे में मेरे हाथ में भी आ गया है आज का वेदर फोरकास्ट। जी हाँ, तो चलिए जान लेते हैं कि आज का मौसम का हालचाल कैसा रहने वाला है। वैसे हमारे सभी श्रोताओं को उल्टो रौद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज भी भाई अलीपुर मौसम जो मौसम विभाग हमें बता रहे हैं कि आज भी मौसम का हाल बेहाल रहने वाला है, क्योंकि बादल छाए रहेंगे, साथ ही साथ बादल गरजने के साथ बारिश होने की भी गुंजाइश है, और बारिश हो ही रही है जैसा कि हम देख रहे हैं। साथ ही साथ अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की गुंजाइश है। बात करें अगर पिछले 24 घंटों की, तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान रहा 29.1 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान रहा 25.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम था। यहाँ बिल्कुल एकदम मौसम सुहाना हो चुका है हमारे यहाँ। और अधिकतम नमी रही 98% और न्यूनतम नमी रही 84%। तो ये था मौसम का हाल चाल। और ऐसे में जब बारिश हो रही है, तभी हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना न सुने तो कैसे हो।

0: इसी के साथ ही चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है एक चुटकी नुस्खे। जी हाँ,
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: अच्छा, अभी तो मौसम के बारे में बातें हो रही थी हमारी, तो फिलहाल तो मौसम ठंडा ठंडा सा है, पर बताइए तो मुझे ज़रा हाथ उठाकर बताइए, दिल में हाथ लगाकर बताइए, कितने लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ये कहा कि अरे बारिश तो हो रही है लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है। सच कहिए, कोलकाता का मानसून कुछ ऐसा ही होता है ना। सुबह तेज धूप, दोपहर में अचानक काले बादल, फिर झमझम बारिश, और फिर बारिश रुकते ही वही उमस, वही चिपचिपाहट। लगता है जैसे मौसम कह रहा हो मैं आपको कंफ्यूज करके ही मानूंगा। लेकिन इस मौसम का मजा तभी है जब हम इसके साथ तालमेल बिठाना सीख ले। लेकिन आज के गपशप में बात करेंगे कुछ ऐसे आसान लाइफ हैक्स की जो इस गर्म और उमस भरे मानसून में आपको रखेंगे फ्रेश, फिट और फुल ऑन एनर्जेटिक। तो सबसे पहली बात, प्यास लगे तब पानी पीना, ये आदत बदल दीजिए। जी हाँ, बात करेंगे इस बारे में, पर उससे पहले चलिए सुन लेंगे हमारा अगला गाना।

हाँ, तो जैसा कि बात छेड़ी थी कि प्यास लगे तो पानी पीना, ये आदत बदल दीजिए। उमस वाले मौसम में शरीर से पसीना लगातार निकलता रहता है। कई बार हमें एहसास भी नहीं होता कि शरीर में पानी कम हो रहा है, इसलिए हर घंटे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। अगर सादा पानी पीने का मन नहीं करता तो उसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल सकते हैं या घर का बना सादा नींबू पानी ले सकते हैं। दूसरी छोटी लेकिन काम की बात, बारिश में भीगना बुरा नहीं लेकिन भीगे रहना ठीक नहीं। कई बार ऑफिस, कॉलेज या बाजार से लौटते समय हम भीग जाते हैं। घर पहुंचकर सबसे पहले सूखे कपड़े पहन लीजिए, खासकर पैरों को अच्छी तरह सुखाइए। नमी ज्यादा देर से त्वचा और पैरों को दिक्कत आ सकती है। अब एक सवाल, क्या आपके बैग में हमेशा छाता रहता है? बताइए बताइए, तब तक गाना सुन लीजिए सोचते हुए।

तो सवाल था आपसे कि क्या आत्मविहार में छाता रहता है? अगर जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसके साथ एक छोटा तौलिया या रुमाल भी रखिए। चेहरे और हाथों का पसीना साफ करने में ये छोटी सी चीज पूरे दिन आराम देती है। और हाँ, इस मौसम में कपड़ों का चुनाव भी बहुत मायने रखता है। मोटे या सिंथेटिक कपड़ों की जगह हल्के और सूती कपड़े पहनिए, इससे शरीर को हवा मिलती है और उमस कम महसूस होती है। अब जरा खाने की बात कर लेते हैं। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म पकौड़े, आए हाय, सुनते ही मन खुश हो जाता है ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि बाहर लंबे समय से रखी हुई चीजें या खुले में बिकने वाले कटे फल खाने से बचे। स्वाद जरूरी है, लेकिन सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है।

चलिए एक और छोटी सी ट्रिक के बारे में बता ही देती हूँ। अगर घर या ऑफिस में एसी चलता है तो बीच बीच में कुछ देर सामान्य हवा भी खा लीजिए, लाइक फैन की हवा। लगातार बहुत ठंडी जगह से अचानक बाहर कहीं उमस में आने पर शरीर को एडजस्ट होने में काफ़ी समय लग जाता है। और एक और दिलचस्प बात, कई लोग सोचते हैं कि बारिश हो रही है इसलिए सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बादलों के बीच से भी सूरज की किरणें त्वचा तक पहुंच सकती है। अगर आपको दिन में लंबे समय तक बाहर रहना है तो धूप से बचाव का ध्यान रखना भी अच्छा है। दोस्तों, मौसम हमारे हिसाब से नहीं बदलता, लेकिन हमारी छोटी छोटी आदतें ज़रूर हमारे दिन को आसान बना सकती है। याद रखिए कि बारिश का आनंद लीजिए, लेकिन उमस को अपने मूड पर हावी मत होने दीजिए। चलिए और भी कुछ टिप्स के बारे में बातें करेंगे, पर उससे पहले सुन लेंगे एक दो बैक टू बैक जबरदस्त गाने।

तो ऐसे में दोस्तों पहली कॉलर हमारी आ चुकी है। चलिए देखते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी कॉलर है, देखते हैं क्या कहती है वो। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, आप सुन सकती हैं? हेलो हेलो हेलो, गाड़ियों की आवाज़ तो आ रही है लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। खैर कोई बात नहीं, चलिए जैसे कि कहा था कि बैक टू बैक दो गाने सुनेंगे, तो दूसरा गाना भी सुन ही लिया जाए।

0: तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारे पहले कॉलर को, देखते हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग जी।
0: हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉनस्टॉप गपशप में। हेलो,
1: सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
0: जी,
1: इतना अच्छा अच्छा गाना बजाने के लिए।
0: थैंक यू सो मच,
1: और हमारे मन की बात बताने मौका देने के लिए।
0: जी बिल्कुल, मन की बात हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, बताइए।
1: और बारिश का सीजन हमारे हिसाब से एक आर्ट है
0: जी,
1: जिसका हमारे कलम से कुछ निकलता है, जैसे पोएम हो, फ्रेंडशिप हो या रोमांटिक हो, और या कोई रिलेशनशिप हो, बहुत सारी बातें निकल जाते हैं इस बारिश होने से वक्त पर। और खाने के लिए के बारिश में सबसे अच्छा है खिचड़ी या इलिश जो है वो फेमस है
0: जी
1: इस बारिश के सीजन में। और इस बारिश के एहसास करता है घर में बैठे बैठे, लेकिन निकलते वक्त कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसी वक्त रेनकोट या अम्ब्रेला यूज करे तो अच्छा होता है।
0: जी जी जी, तो ये उमस, बारिश तो हो रही है साथ ही साथ ये जो उमस है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये बताइए, मतलब कुछ तो उपाय होगा ना, अभी बारिश हो रही है ठीक है।
1: देखिए ह्यूमिडिटी तो प्रकृति का एक नियम है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन नो ह्यूमिडिटी की तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमिडिटी बारिश के सीजन में होता ही है। और हमारे कुछ हल्का पल्का पोशाक या शर्ट या मैंने जो पहने है उसका लाइट कलर पर अच्छा होता है, और हल्का और खाने से कुछ ठंडा, जैसा मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं करता हूँ, जो लिम नींबू पानी है और जो हमारे शरीर ठंडा करेगा वो खाना अच्छा है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीरुद्दीन दा। मूर्ति के आप कोई गाना सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो बताएं।
1: आपके पास है तो जब तक है जान फिल्म से सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई।
0: ओके,
1: जैसा कि सिंगर है श्रेया घोषाल और मोहित चौहान, म्यूजिक डायरेक्टर है ए आर रहमान
0: जी,
1: सज गुलजार, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा का फिल्म है।
0: जी चलिए तो फिर सुन लेते हैं ये गाना।
1: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू सो मच।

0: तो चलिए देखते हैं, हमारी कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ फिलहाल। कौन है? हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉनस्टॉप गपशप में। हेलो, आई गेस दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं हो पा रही है। तो बात हो रही थी कि उस मौसम की जो हर दिन नया रंग दिखाता है, कभी धूप कभी बारिश और कभी ऐसी उमस की लगता है जैसे हवा भी पसीना बहा रही हो, लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो यही मौसम सबसे खूबसूरत भी बन सकता है। अब जरा अपने घर की तरफ चलते हैं। बरसात के दिनों में अक्सर घर के दरवाजे और खिड़कियां पूरे दिन बंद रहती हैं, नतीजा कमरे में नमी बढ़ जाती है और अजीब सी घुटन महसूस होती है। इसलिए जब भी मौसम थोड़ा साफ हो, कुछ देर के लिए खिड़कियां खोल दीजिए, ताज़ी हवा पूरे घर को माहौल बदल देती है। और अब एक ऐसा लाइफ हैक जो शायद आपको कभी सोचा भी नहीं होगा, इस मौसम में मोबाइल फ़ोन भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर फ़ोन बार बार गर्म हो रहा है तो उसे तकिए के नीचे या बंद बैग में मत रखिए, थोड़ी देर के लिए उसे सामान्य तापमान पर रहने दें। इससे उसकी बैटरी भी बेहतर चलती है और फ़ोन भी सुरक्षित रहता है। बात पैरों की, बरसात में कई बार जूते भीग जाते हैं तो हम उन्हें अगले दिन फिर पहन लेते हैं। कोशिश कीजिए कि जूते पूरी तरह सूखने के बाद ही पहने। अगर दो जोड़ी जूते हैं तो उन्हें बारी बारी से इस्तेमाल करना बेहतर है। दोस्तों, कोलकाता की एक और पहचान है चाय। जी हाँ, बारिश शुरू हुई नहीं कि चाय की याद आ ही जाती है ना, और चाय की याद में ही ये गाना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

0: चुटकी नुस्खे। आज के दिन।
1: अब बारिश और उमस की बात तो हो गई, और बारिश और उमस के टाइम पे हम कैसे अपना खुद का केयर करें, अपनी फैमिली का केयर करें, घर का केयर करें, इसके बारे में भी ढेर सारी बातें हुई। तो अब चलिए, अब बारी है सेक्शन आज के दिन की। उम्मीद है कि छोटी छोटी जो बातें हुई एक चुटकी नुस्खे में आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएंगे, क्योंकि अक्सर ज़िंदगी बदलने के लिए बड़े फैसले नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों की ज़रूरत होती है। और बात जब अच्छी आदतों की हो तो आज का दिन भी हमें बिल्कुल सही संदेश देता है। बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, आज के दिन की ओर। आज है 24 जुलाई और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आपने अभी सोचा है आखिर इस दिन की शुरुआत कब हुई और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने महसूस किया कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, तनाव, हृदय रोग जैसी कई समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इनमें से कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें काफ़ी हद तक बचा भी जा सकता है अगर लोग अपनी रोज़मर्रा की आदतों पर थोड़ा ध्यान दें। लेकिन व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग अपनी सेहत को लगातार नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। इसी सोच के साथ साल 2011 में इंटरनेशनल सेल्फ केयर फाउंडेशन यानी कि ने इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य लोगों को ये समझाना था कि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल डॉक्टर या अस्पताल की नहीं बल्कि हमारी अपनी भी है। अब सवाल उठता है कि 24 जुलाई ही क्यों, बताएंगे पर इस गाने के बाद।

जी हाँ, 24 जुलाई का दिन खुद को खुद से मिलाने का है। इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प वजह भी है। 24 जुलाई को 24/7 यानी दिन के 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन का प्रतीक माना गया है। संदेश बिल्कुल साफ है, सेल्फ केयर किसी एक दिन का अभिनय अभियान नहीं बल्कि हर दिन की बात है, हर पल अपनाए जाने वाली जीवन शैली भी है। तो याद रखिए, सेहत कोई मंजिल नहीं बल्कि हर दिन की आदत बना लीजिए, और सेल्फ केयर उस आदत की सबसे मजबूत नींव है। इसी संदेश के साथ आज के दिन में बस इतना ही, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अपने लिए हर दिन थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। फिलहाल चलिए, अब जाते जाते अब साइन ऑफ करने का टाइम भी हो चुका है। 107 एफएम रेनबो में आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप गपशप आपकी दोस्त पापिया के साथ, और जाते जाते के और सुनिधि चौहान की आवाज में सजदे सुनते हैं, और मिलते हैं ठीक 11:10 पर लो आगे उनकी याद लेकर एफएम गोल्ड पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात, जनगणের কথা, সকলের নিজের কথা, কিছু লড়াইয়ের কাহিনী, কিছু সাফল্যের আখ্যান, অব্যক্ত ঐতিহ্যের গাথা, নতুন ভারতবর্ষের আশা, মাসের শেষ রবিবারের অপেক্ষায় থাকা, মলয় পর্বতের কোল থেকে

0: मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
1: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: 4 बजे आप सुनेंगे 2 मिनट के लिए स्थानीय समाचार बंगला में, और 4:02 से आप सुनेंगे कैफे कोलकाता।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तुम्ही सुनछो वीकेंड कैफे 107 FM रेनबो ते। वीकेंड कैफे, वीकेंड कैफे।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका ही पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक। और छायालोक में आज शुक्रवार की शाम फ्राइडे इवनिंग को रहता है आपके लिए विशेष सेगमेंट, और जो कि है सेल्यूलॉयड सुपर हिट्स। और जब सेल्यूलॉयड सुपर हिट्स की बात हम करते हैं ना, तो इस कार्यक्रम में मतलब कई ऐसे फिल्मों को लाते हैं जो सुपर हिट रहे हैं और उनकी मुख्य खूबी क्या रही है उसके बारे में भी हम कुछ कुछ बातें करते हैं। वैसे गाना सुनना और सुनाना ज़्यादा पसंद करते हैं और शायद यही बात आप भी सोच रहे होंगे। तो चलिए इसी बात पर सबसे पहला गाना जिसे मैं आगाज करना चाहूंगी कार्यक्रम सेल्यूलॉयड सुपर हिट्स का आज के शाम, वो मैंने लिया है फिल्म मैंने प्यार किया से। कोकिल कंठी लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को आप सुनेंगे। और आपको बता दूं कि इस गीत को बड़ी खूबसूरती से असद भोपाली ने कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है राम

अभी अभी आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया से दिल दीवाना बिन सजना के माने ना कोकिल कंठी लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी इन द ईयर 1989 और इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें आपसे साझा करना चाहूंगी और वो ये है कि मतलब एकदम फ्रेश और मासूम जोड़ी सलमान खान प्रेम के रूप में और भाग्यश्री सुमन के रूप में, ये जो पहली मुख्य और सादगी से भरी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। बेहतरीन संगीत, फिल्म के गाने जैसे दिल दीवाना, कबूतर जा जा बहुत मशहूर हुए, जिन्होंने फिल्म की सफलता में बड़ा योगदान दिया। पारिवारिक और साफ सुथरी कहानी और पारिवारिक मूल्यों को पर्दे पर दिखाया गया जिससे परिवार इसे एक साथ देख सके। दोस्ती का नया अंदाज भला कैसे भूल सकते हैं हम। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू जैसे संवाद डायलॉग, और दोस्ती से प्यार की शुरुआत वाले कॉन्सेप्ट ने युवाओं का दिल जीत लिया। जी हाँ, अगला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया से कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

क्यों, कैसा लगा हवा हवाई सुन के? ये फीलिंग तो आ ही रही होगी कि आप भी हवा में उड़ान भर रहे हो। अरे गाने का असर है तो होना ही चाहिए। चलिए ये फील गुड का एहसास जो है ना गाने सुनकर जो होता है इसे बनाए रखिए। रहूंगी आपके साथ शाम के 8 बजे तक। और फिलहाल आपको बता दूं कि ये गाना आपने सुना था 1987 में रिलीज हुई क्लासिक फिल्म मिस्टर इंडिया से। और इस फिल्म की एक खास बात थी, अद्भुत गैजेट था इनविजिबल गैजेट, जी हाँ, जिसे पहनकर अनिल कपूर, यानी कि अनिल कपूर ने जो किरदार निभाया था अरुण का, वो अरुण गायब हो जाते थे इस अद्भुत गैजेट को पहनने के बाद। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 10 करोड़ रुपए थे, जो उस समय के हिसाब से ब्लॉकबस्टर था। और भला अमरीश पुरी को उनके शानदार अभिनय मोगैम्बो के लिए मुख्य रूप से फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी मिला था, और भी पुरस्कार मिले थे इस फिल्म में अलग अलग श्रेणी में। लेकिन उनका वो फेमस डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ, जैसे कि आप ये गाना सुन के खुश हुए।

मौसम संबंधी सूचना। हल्की से मध्यम आंधी और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चलने की संभावना है अगले 2-3 घंटों में। अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों पर इसका असर पड़ने की बहुत संभावना है। मौसम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

अभी आपने बेहद खूबसूरत म्यूजिकल गीत, मतलब क्या कहूँ, एक यादगार गाना है ये, कुछ कुछ होता है फिल्म, ये रिलीज हुई थी 1998 में और बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपने सुना उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। कुछ कुछ होता है, शानदार अभिनय, बेहतरीन संगीत और मजबूत भावनाओं के कारण एक ऑल टाइम सुपरहिट फिल्म माना जाता है। इसमें शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की जो मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, आज तक लोग उसे याद करते हैं और करण जौहर ने जो निर्देशन किया वो भी कमाल का था और शानदार जोड़ी और अभिनय की बात करूं तो शाहरुख खान और काजोल की केमिस्ट्री और रानी मुखर्जी का अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर और संगीत ने फिल्म को बहुत लोकप्रिय बनाया। फिल्म में दोस्ती और प्यार के बीच के रिश्ते को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया था और क्या, कुछ कुछ होता है फिल्म जो है काफ़ी चली थी, काफ़ी हिट हुई थी और फिल्म का नाम भले कुछ कुछ होता है लेकिन जिसने देखा उसे बहुत कुछ हुआ, यानी कि फिल्म बहुत पसंद आई। और अब रुक करते हैं अगले गीत की ओर जिसे हमने लिया है फिल्म अमर अकबर एंथनी से।

ऐसा है कि गाने के लिरिक्स में था हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे, लेकिन अभी जितने लोग सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम छाया लोक में सेगमेंट सेलुलॉइड सुपरहिट्स, उन सभी को कहीं ना कहीं प्यार है।

इस म्यूजिकली योर्स से, क्योंकि ये म्यूजिकली योर्स रहता आपके साथ 24/7 ऑल डे ऑल नाइट, और हमारा और आपका कनेक्शन होता है हार्ट टू हार्ट, यानी इसकी दिल से दिल तक। तो हम सभी जुड़े हैं प्यार के इस धागे से जिसका नाम है 107 एफएम रेनबो। और आपको बता दूं, अभी जो गाना आपने सुना फिल्म अमर अकबर एंथनी से हमने लिया था, ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1977। मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी कल्ट क्लासिक और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प बातें आपसे साझा करना चाहूंगी। क्यों, क्या कहते हैं, इजाजत देते हैं? चलिए, आपने इजाजत दे दिया तो फिर भला कौन रोक सकता है। फिल्म की कहानी का आइडिया डायरेक्टर मनमोहन देसाई को एक अखबार की खबर से जो है वो आया था। उस खबर में एक शराबी पिता अपनी जिंदगी से तंग आकर अपने 3 बच्चों को पार्क में छोड़ देता है। फिल्म की शुरुआत में प्राण किशनलाल बिल्कुल यही करते हैं। विनोद खन्ना की जिद थी, वो जिद क्या थी? विनोद खन्ना अमर का किरदार निभा रहे थे फिल्म में, और उनके ऑपोजिट हीरोइन नहीं थी क्योंकि उनका किरदार थोड़ा गंभीर था। जब विनोद खन्ना को ये पता चला तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि अमिताभ और ऋषि कपूर के साथ हीरोइन है तो उनके साथ भी होनी चाहिए। इसके बाद शबाना आजमी को कास्ट किया गया। एक ही सीन में 4 दिग्गज, फिल्म का एक गाना हमको तुमसे हो गया है प्यार तो बहुत खास है क्योंकि इसमें हिंदी सिनेमा के 4 सबसे बड़े गायकों ने, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और लता मंगेशकर ने एक साथ अपनी आवाज दी थी। यह शायद उस समय तक पहली बार ऐसा हुआ था। म्यूजिक फिल्म में जो म्यूजिक अरेंजर है एंथनी गोंसाल्विस के नाम पर रखा गया था। लेकिन इसके साथ एक और बात है, पता है क्या? मनमोहन देसाई, जी हाँ, मनमोहन देसाई का यह कहना था, मानना था कि जनता द्वारा सिर माथे पर बैठाई गई इस फिल्म को खुद वो अपनी सबसे कम पसंदीदा फिल्म मानते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसे कहा कि ये जो है फ्लूक हिट है, तुक्के से मिली सफलता। अब दर्शकों को तो बहुत पसंद आया, और अब क्यों ना हम रुख करें अगले गीत की ओर। अगले गीत में चलिए हम आपको ले चलते हैं चंदन और गुंजा के साथ।

ऐसा है दोस्तों कि ये गाना जो आपने सुना कौन है दिशा में लेके चल रहे बटोहिया, हेमलता और जसपाल सिंह ने की आवाज में इस गीत को आपने सुना और इसे कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने। 1982 में रिलीज हुई सचिन पिलगांवकर और साधना सिंह की फिल्म नदिया के पार एक सदाबहार क्लासिक फिल्म है। इस फिल्म से जुड़ी कई ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कि ये फिल्म राष्ट्रीय प्रोडक्शन को बंद होने से बचाने के लिए बनाई गई थी और ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके हैं कौन इसी की रीमेक है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की संजीवनी बनी ये फिल्म। जब ये फिल्म शुरू हुई थी तब राष्ट्रीय प्रोडक्शन बहुत

0: खराब दौर से गुजर रहा था और कंपनी बंद होने के कगार पर थी। इस फिल्म ने कंपनी को ना सिर्फ उबारा बल्कि उन्हें एक ऐतिहासिक सफलता दिलाई। साधना सिंह का डेब्यू हुआ इस फिल्म से। दिलचस्प बात यह है कि ये रोल उनकी बड़ी बहन को दिया जा रहा था, सुरेंद्र कौर को, लेकिन ऑफर तो उन्हीं को हुआ था लेकिन वो शूटिंग में व्यस्त थी, तो इस कारण उनकी छोटी बहन को जो दिया गया उन्हीं का नाम सुझाया गया था और फिर साधना सिंह को लिया गया था। फिल्म हम आपके हैं कौन की कहानी क्या आप जानते हैं कि सलमान खान और माधुरी दीक्षित की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके हैं कौन 1994 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की रीमेक थी नदिया के पार की। उस फिल्म का प्लॉट और किरदार नदिया के पार से ही प्रेरित था। असली कहानी थी बहुत दुखद। अब आप सोचेंगे कैसे, तो वो भी बता देती हूँ। ये फिल्म केशव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित हिंदी उपन्यास कोहबर की शर्त के पहले भाग पर आधारित थी। उपन्यास में कहानी का अंत फिल्म की तुलना में काफी दुखद और दर्दनाक था, लेकिन फिल्म मेकर्स ने इसे सुखद हैप्पी एंडिंग बनाया। शूटिंग की जगह की बात करूं तो फिल्म पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के जौनपुर और आसपास के जिलों में शूट की गई थी और फिल्म में दिखाए गए असली गांव जैसे राजीपुर और बीजापुर आज भी उसी मासूमियत और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। और बिहारी लहजा और सचिन, मुख्य अभिनेता सचिन महाराष्ट्र के थे लेकिन फिल्म में उन्होंने जिस तरीके से देसी अवधि बिहारी लहजा अपनाया वो किसी आश्चर्य से कम नहीं था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्यों, आपको याद दिला दूं कि महीने के आखिरी रविवार, हाँ जी आखिरी रविवार को 11 बजे आपके लिए रहता है एक खास कार्यक्रम।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लो 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लो।
0: स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 7:48 यानी 8 बजे तक रहूंगी। इस बीच 12 मिनट हमारे बीच शेष बचा है तो आपको मैं सुनवाना चाहूंगी फिल्म आशिकी से अगला गाना। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1990 में और इससे जुड़ी कुछ अनसुनी तथ्य भी आपसे साझा करना चाहूंगी, लेकिन पहले ये गाना सुन ले उसके बाद।

0: फिल्म आज की रिलीज हुई थी इन द ईयर 1990 और एक मशहूर बॉलीवुड रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है। और आपको बता दूं कि इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें अगर मैं कहूं तो वो ये है कि निर्देशक महेश भट्ट के अनुसार फिल्म का एक बड़ा हिस्सा उनकी अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट के साथ उनके वास्तविक जीवन के रिश्ते पर प्रेरित था। राहुल रॉय का चयन कैसे हुआ ये भी बता दूं। महेश भट्ट राहुल रॉय की मां इंदिरा रॉय से मिलने गए थे जो एक चैरिटी वर्कर थी, वहीं उन्होंने राहुल को देखा और फिल्म के लिए चुन लिया। मुख्य अभिनेता राहुल रॉय की आवाज को अभिनेता आदित्य पंचोली ने डब किया था। रिकॉर्ड तोड़ गाने, नदीम श्रवण के संगीत और कुमार शानू की आवाज वाले जो हैं इस मतलब ये पूरी की पूरी फिल्म म्यूजिकल हिट रही और इस फिल्म के गाने इतने लोकप्रिय हुए कि 1 करोड़ ऑडियो कैसेट बिकने के बाद गिनती जो है बंद कर दी गई थी। और अब समय उछला है कि थोड़ी ही देर बाद मैं आपसे इजाजत लूं जाने के लिए। वैसे जी तो नहीं चाहता लेकिन क्या है कि हम नियम को मानने वाले लोग हैं। आपको बता दूं कि अगला गाना जो आप सुनेंगे और जिसके साथ मैं आपसे आज्ञा लूंगी वो गाना मैं आपको सुनवाऊंगी फिल्म एक दूजे के लिए। फिल्म से एक दूजे के लिए एक शानदार संगीत और उत्तर दक्षिण संस्कृति के टकराव की अनूठी कहानी और कमल हसन व रति अग्निहोत्री के दमदार अभिनय के बल पर ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। ये 5 जून 1981 को रिलीज हुई थी और इसने लगभग 10 करोड़ की कमाई की थी। क्या बताऊं फिल्म का अंत बहुत ही दुखद था लेकिन लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और ये प्रेम कहानी लोगों के जो दिलों को छू लिया। और अब चलते चलते ये गीत मेरे जीवन साथी और इस गीत के लिरिक्स को आप सुनिएगा ना, पूरा का पूरा जो है किसी न किसी हिंदी फिल्म के गाने से जुड़ा हुआ है। तो इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत को। फिर मुलाकात होगी, साथ रहिए, बने रहिए, सुनते रहिए 107 FM रेनबो।
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर। वो इंग्लिश।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

अरिजीत सिंह की आवाज के साथ आप सभी का स्वागत है 107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकली यॉर्स पर। स्टूडियो की घड़ी पर में जो समय हो चला है वो है 8:08 यानी 8:08 और आ गई है मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। दोस्तों और ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है अरिजीत सिंह की आवाज़ के साथ, जिसमें हमने सुना सबसे पहले टाइटल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज़ में ए दिल है मुश्किल फिल्म से। और आप सभी का स्वागत करते हुए ये जो गीत है थोड़ा सा अलग था, लेकिन फिर भी कुछ बेहतरीन तरानों के नजराने हैं कार्यक्रम छायालोक में। तो आइए सुनते हैं अगला गीत अदिति पॉल के साथ साहिल हाडा की आवाज में।

वेल फ्रेंड्स, फिल्म रामलीला से आप सुन रहे थे अदिति पॉल के साथ साहिल हाडा की आवाज में ये गीत, और 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर जारी है कार्यक्रम जिसका नाम है छाया लोक। स्टूडियो की घड़ी में समय 8:14:17। फिलहाल अगला जो गीत है इसके विषय में आपको बता दूं, दो गीत हैं बैक टू बैक क्योंकि 107 एफएम रेनबो पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला है जारी, और इस सिलसिले में आप जो अगला गीत सुनेंगे वो है फिल्म वजह तुम हो से। इस गीत में जो आवाज है वो है मीत ब्रदर्स के साथ अरमान मलिक और तुलसी कुमार की, और इसके ठीक बाद आप सुनेंगे फिल्म दिल से सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सतरंगी रे। एक के बाद एक बैक टू बैक गीत आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यार्स।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

दोस्तों, फिल्म दिल से जितनी खूबसूरत थी, उस फिल्म का ये गीत उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। और आपको बता दें, सोनू निगम के साथ कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़, गुलजार के बोल ए आर रहमान की कंपोजिशन, ये कम्बिनेशन था बेहद यूनिक। और इसने बनाया एक ऐसा बेहतरीन तराना जो ऑन स्क्रीन शाहरुख खान के साथ मनीषा कोइराला की केमिस्ट्री को दिखाता तो है ही, साथ ही इश्क के जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं उनको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस करता है। दोस्तों, फिलहाल पेश है आप सभी के लिए रमता जोगी, सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज में।

आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

फैंस, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म टू स्टेट से अरिजीत सिंह के साथ चिन्मयी श्रीपद की आवाज में। कुछ बेहतरीन तराने अपनी जो छाप है वो हम तक छोड़े जाते हैं, और ऐसा ही एक मजेदार गीत आप सभी के लिए पेश है। लेकिन उसके पहले सोनू निगम की आवाज में फिल्म परदेश से ये गीत।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

दोस्तों, बातें अनकही सी अनसुनी सी तो होती ही रहती हैं, लेकिन इसी दरमियान आपने सुने कुछ बेहतरीन तराने जिन्हें सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:55 और 31 सेकंड, यानी कि अब आपसे लेना है मुझे विदा हर्षदीप कौर के साथ बनी दयाल की आवाज में। अगला गीत सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वादे के साथ। गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखें।

107 एफएम रेनबोए आपके लिए हिंदी छाया छविर गानेर अनुष्ठाने आपनादेर संगे आमि रयेछि उज्जवल। आज प्रथमे भगवान अमिताभ बच्चन अलका याग्निक